0: से चले होते तो आज ना ही तुम हंसते और ना ही हम रोते.
1: Where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.

0: is CJMR 1320, the voice of the city.
1: तुम्हें मालूम है मैं शतरंज क्यों नहीं खेलता? क्योंकि दुश्मन को मैं सामने बिठाता नहीं हूँ।

0: ओ सानू मंजला ना प्यार मेरे हीरा ना नहीं तकदीरा नाल वैर साडा लीरा ना नहीं तकदीरा नाल वैर साडा लीरा ना नहीं।
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

0: मैं तेरी हर गल ते यारा अमीन कीता सी, अमीन कीता सी।
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.

मत पूछो क्या क्या होता है मोहब्बत के बाजार में, ये दिन भी हमने देखे हैं प्यार में, अपनों ने रखा

तेरे जैसा किसी ने कहीं आज तक कोई देखा नहीं, तुझको पा लेने की अब किसी हाथ में कोई रेखा नहीं। तेरी आंखों का साहिल ही तो मेरी मंजिल है, तू मिल न मिल। तेरे होठों का तिल मुस्तकिल दिल का कातिल है, तू मिल न मिल। सारी दुनिया इसी सोच में ही मगन है कि तू कौन है, शाहजादियों को भी तुझसे जलन है कि तू कौन है।

तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

खफा तो बेकदर यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर ए खुदा मुझे दे सबर तू साथ है तो किसका डर वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर जिंदगी खेल नहीं ये सिर्फ एक तमाशा है कितनों को झेल हुई जुर्म में इजाफा है हम आना के देर हुई इस कलम से वादा है।

0: बच्चों को चूस कर गुठलिया फेंक दी है।
1: पेंट चोटियां चर्चा दे विच पहले तेरा वे राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया खेरा वे पंडता खानी कितड़ बहनूरे लाई आउणगियां हुण नी जज जमानत दिंदा।

दो, जलने दो, समाने को जलने दो, बदले की आग में उसको भी मरने दो, जलने दो, जलने दो, जमाने को जलने दो, बदले की आग में उसको भी मरने दो।

ज्यादा ना सुना कर उनकी, तू ज्यादा ना सुना कर उनकी, बस अपने ही किया कर मन की, बस अपने ही किया कर मन की। देख तुझे जलती है जिनकी, हाँ देख तुझे जलती है जिनकी, क्यों फिक्र करें, क्यों फिक्र करे फिर तू उनकी।

जोड़े है झेलम का पानी, सफर तू बता मुझको चलना किधर है, है मुझको तलब खुद से मिलना किधर है, जो मांगी दुआ में मन्नत यही है, सच तो है दुनिया की जन्नत।

0: नफरत में तो लेना कोई
1: हिप हॉप बनी लाइफ कपड़े दिए खाना दिया फैंस के रूप में खजाना जीने के लिए जमाना दिया परायों ने प्यार अपनों ने ताना दिया मैं हिप हॉप नहीं कईयों ने दावा किया मैंने हर तरीके का गाना दिया नास के लेवल के साथ गाना किया टेल मी कितने रैपरों ने जो गाया जिया बता दो कितने रैपरों ने जो गाया जिया।

खड़ी ना दिखाओ, गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर करेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गई।

0: voice, your community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: जब तू साथ नहीं होती, तड़पता मेरा दिल है, मेरी रग रग में लहू के साथ साथ तू भी शामिल है।

0: The voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.
1: दूध उबालोगे? दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: पास हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम। कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।
1: Encouraging community, culture and unity. CJMR 1320.

0: Your voice, your community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: तुम्हारी याद में आंसू बहाना दिल की दीवानगी है। तुम्हारे दूर जाने के फैसले की वजह से जिंदगी अब जिंदगी नहीं, सिर्फ आवारगी है।